0: कुछ उनकी सुने कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें। ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना, आपके मेजबान हैं खलील शिराजी और वसीमा आबिद। प्रोग्राम दीवान खाना के तमाम सामईन को आदाब। सामईन, गुज़श्ता हफ्ते की महफिल दीवान खाना में आपने टोक्यो के उवेनो पार्क में 6 से 9 अगस्त तक मुनाकिद होने वाले पाकिस्तान जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल की रिपोर्ट का पहला हिस्सा सुना था। आज पेश खिदमत है इसी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा। इस वक्त हम टोक्यो के उवेनो पार्क में मौजूद हैं और फेस्टिवल के दाखिली दरवाजे पर पाकिस्तान और जापान के झंडे लगे हुए हैं।
1: देखें, वाह, ये है झंडा। आज टोक्यो का दर्जा हरारत जो है खलील साहब, कोई 33 डिग्री सेंटीग्रेड है।
0: इसके बावजूद देखें, इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग बहुत ज़्यादा हैं, रश बहुत ज़्यादा है।
1: असल में जापान के लिए तो ये बहुत शदीद गर्मी है। चलें, झंडा देख लिया, अब आगे चलें। कबाबों की खुशबू आ रही है,
0: मुझे तो पुलाव की महक आ रही है। ढूंढते हैं कहाँ है, किधर है, जाइए अंदर।
1: ओके, इधर जाए कि उधर जाए?
0: मेरे ख्याल में यहाँ से बेहतर।
1: चलें,
0: इस वक्त हम पुलाव और सीख कबाब के स्टॉल पर मौजूद हैं। कुछ स्टॉल्स पे मैं देख रहा हूँ कि लंबी लंबी कतार है और कुछ पे रश थोड़ा कम है।
1: अरे, बहुत सारे जापानी लोग भी यहाँ कतार में लगे हैं, तो जापानियों से पूछिए उनको खाना कैसा लगा।
0: मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा, पूछते हैं उनसे।
1: चलिए आइए, पूछते हैं।
2: आपने कौन सा पाकिस्तानी खाना खाया और क्या ये मजेदार था? सुमसेन, दोनों पाकिस्तान और फूड और तबे मश्ता का

0: マトマジのビリヤニを食べました。
1: 美味しいですか？
0: はい、スパイスが効いて美味しいです。
1: ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तानी बिरयानी का मजा लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा।
2: जी सामिन, एक पाकिस्तानी माफ कीजिएगा, एक जापानी फैमिली पाकिस्तानी खाना खा रही है, तो मैंने इनसे पूछना है कि आपको पाकिस्तानी खाने की क्या चीज पसंद है, और बाकी चीजें भी इनके पास जो पड़ी हैं उनकी भी तफसील पूछते हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम।今日は2ヶ月前にパキスタンに行きまして、その時にビリヤニがもう大好きになって帰ってきました。
2: ジーサーメン、ウノネハメバタヤケボドミネペレパキスタンゲンティマウノネブリヤニカイジョセブリパサンダイト、イスリエウノネヤハケインタカーピアケブリヤニカイ、ウサーチョパニプリノネサメレキヤクリキボケティモメペリバカリン。सामिन, बड़ी लंबी कतार है और एक जापानी खातून, बड़े सबर से खातून ने, एक लड़की, प्यारी सी लड़की, बड़े सबर से कतार में लगी है। मैं उनसे पूछूंगी कि आपको पाकिस्तान में खाना अच्छा लगता है या पहली दफा खा रही है या क्या उनका राय है।
4: हजमेते समोसा तो पानी पूरी वो तबेमास के पाकिस्तान लोरी हजमेते नाम दिस के तो कुतोशी नो कगाच नी तोमोदाच तो पाकिस्तान नी ल्योको नी इकु नोदे।
2: अच्छा जी सामिन, उन्होंने मुझे बताया कि वो पहली दफ़ा पाकिस्तानी खाना खाने लगी हैं और समोसा और पानी पूरी खाने का इरादा करके आई हैं, और कहती हैं कि वो सितंबर में शायद पाकिस्तान जाएंगी। इस फेस्टिवल ने पाकिस्तान और जापान दोनों के रवायती सकाफती फ़नून के ज़रिए एक दूसरे के महलों को जानने की कोशिश की है और फ़नून को उजागर करने की कोशिश की है। इसमें यहाँ मौसीकी का अहतमाम है, ड्रग्स के मुजाहरे हो रहे हैं और मेहंदी का इवेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं जापानी लोगों को पाकिस्तानी रवायात से मुतासर कर मुतारफ़ कराने के लिए है।
5: सामीन, मेरे बैकग्राउंड में आप रबाब की खूबसूरत धुन सुन सकते हैं।
2: इस वक्त स्टेज पे एक दफ बजाने वाले हैं, एक तबला बजाने वाले हैं, तीन रुबाबी हैं और उनमें से एक गिटार भी बजा रहे हैं।
5: अगर देखा जाए कि बतौर जापानी मेरी नज़र में वो बेहतरीन अंदाज में बजा रहे हैं, और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि हमारे लात मौसीकी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जापान में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं।
2: ये जापानी खातून बड़े इन्हबाग से सुन रही हैं, तो आइए उनके तासुरात मालूम करते हैं।
6: 初めて聞いたんですけど、すごいエネルギッシュで。
2: इस म्यूजिक के बारे में ये जापानी खातून ने मुझे बताया कि उन्होंने पहली बार ये म्यूजिक सुना है और बड़ा तवानाई बख्श लग रहा है, उनको लग रहा है कि उसमें तवानाई उसमें भरती है।
5: तो दोस्तों, जापानी खातून के तासरात आपने सुने, अब यहाँ पे एक और भाई मौजूद हैं, उसे पूछते हैं कि वो कहाँ से हैं और वो इस मौसीकी के बारे में क्या कहते हैं। जी अपना तारुफ कीजिएगा, आप कहाँ से हैं?
7: हम पाकिस्तान से हैं, पहली दफ़ा आए हैं, सिगामी आरा से आए हैं इधर ना।
5: अच्छा,
7: तो बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा है।
5: ये जो पाकिस्तानी आलात मौसीकी हैं, ये जो जापानी बजाने वाले हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में, इनकी महारत के बारे में?
7: ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत प्यार से चला रहे हैं।
5: अच्छा,
7: हम इंजॉय,
5: आप इंजॉय कर रहे हैं?
7: हाँ इंशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है।
5: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।
2: सामिन, फ़न का मुजाहिरा तो हमने देख लिया, क्यों ना आप इन फनकारों से भी आपकी मुलाकात कराएं, क्या ख्याल है खलील साहब?
5: जी बिल्कुल, अभी टोक्यो सूफी ग्रुप के सरबराह उवैदा ताकायुकी हमारे साथ मौजूद हैं, तो जाके उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप हमें ये बताइए कि आप इतने आलात मौसीकी एक साथ बजा लेते हैं, कहाँ से सीखा, कितना अरसा लगा और ये शौक कैसे पैदा हुआ आपका?
8: 私はアメリカのバークリー音楽院というところで若い時に基礎的な音楽理論と知識を学びました。でその後世界いろいろ旅するにあたって、
5: ये कह रहे हैं कि मैंने अमेरिका में 15 साल की उम्र में गिटार और बेस की बुनियादी तालीम हासिल की, इसलिए रबाब और सितार वगैरह बजाना मेरे लिए आसान था। मैं मौसीकी बना भी सकता था लेकिन ये काफ़ी नहीं था, इसलिए मैं पाकिस्तान गया, वहाँ एक उस्ताद के साथ मैंने शागिर्दी की और उस कम्युनिटी के साथ मिल के प्रैक्टिस करके मैं अब भी मुसलसल सीखता रहता हूँ।
2: खलील साहब, अब बाकी स्टॉल भी देख लें,
9: बाकी स्टॉल भी देख लेते हैं जी, आइए।
2: यहाँ कपड़े फरोख्त हो रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान, ये सब पाकिस्तानी है ना?
9: मेरे ख्याल में शायद कपड़े हैं तो पाकिस्तानी होंगे।
2: हाँ, ये कुर्ता है ना?
9: बिल्कुल,
2: और देखें
9: बहुत अच्छे
2: उधर कढ़ाई वाले भी कपड़े हैं। अच्छा,
9: ये देखें, ये
2: यहाँ मेहंदी लगाई जा रही है। अच्छा, ये खवातीन हाथों पे मेहंदी लगा रही हैं, वाह।
9: ये तो हाथों पे लगा रही थी, एक जगह मैंने देखा खातून पैरों पे भी मेहंदी लगवा रही थी।
2: चले आइए जरा पास चले। जी सामिन, इस खातून से मैं पूछती हूँ उनको मेहंदी लगवाना कैसे लग रहा है और क्या वाकई वो पहली बार मेहंदी लगवा रही हैं? जो हजमी थे मेहंदी
10: वाहमे चुने मोटी तनोदे निकाय में जैसे
2: आपको मेहंदी लगा के अब कैसा लग रहा है?
10: जीवन दे काफी और जुत्तो जोजनोदे
2: जी सामिन, मेहंदी लगवाने वाली खातून से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो पहली दफ़ा नहीं मेहंदी लगवा रही, पिछले साल भी इसी फेस्टिवल पे मौके पे उन्होंने मेहंदी लगवाई थी और वो कहती हैं कि इतना अच्छा मैं खुद नहीं लगा सकती पर अब ये कोई फनकार मेरे लगा रहा है तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। सामिन, ये बच्ची बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगा रही हैं, क्या बेल बूटे बना रही हैं, तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम।
11: वालेकुम सलाम।
2: आपका नाम क्या है?
11: मेरा नाम रिहाना है।
2: आपका कैसा चल रहा है? लोग काफ़ी लोग मेहंदी लगवा रहे हैं और मुझे बताएं कि लोग किस किस्म के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद करते हैं?
11: बहुत अच्छा चल रहा है, ज़्यादातर लोग इस तरह के वन पॉइंट लगवा रहे हैं। जापनीज़ लोग तो इस तरह मेहंदी नहीं लगवाते जिस तरह हम पाकिस्तानी लगवाते हैं, तो वन पॉइंट फूल वगैरह या इस तरह स्टार्स और मून्स इस तरह के डिज़ाइन लगवा रहे हैं।
2: बहुत मसरूफ़ हैं आप सुबह से कि कोई कोई कस्टमर आ रहा है?
11: काफ़ी मसरूफ़ हैं, जापनीज़ बहुत इंटरेस्टेड है ना कि क्या है किस तरह का है, इनको नहीं पता ना, जापान में नहीं होता मेहंदी, तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं ये।
2: बहुत शुक्रिया,
11: थैंक यू सो मच।
9: दरअसल इस साल यहाँ NHK की जानिब से भी फेस्टिवल में एक बूथ लगाया गया था, एक स्टॉल सजाया गया था जिसमें लोगों से एक सवालनामा भरवाया जा रहा था कि हम जापानी मुआशरे के साथ मानूस होने के लिए क्या कर सकते हैं।
2: सामिन, ये सवालनामे का मकसद ये था कि किसी भी मुआशरे में जब दो मुख्तलिफ सकाफतें मिलजुल के रहती हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात मुख्तलिफ ज़रूर होती है, तो उसकी वजह से कभी ख़तरा होता है कि कोई तनाव ना हो जाए, तो कोई गलत फहमी ना हो जाए, तो इस सब से गुरेज के लिए हमने फ़ैसला किया कि इसके लिए हम लोगों से कैसे उनकी राय दरियाफ्त कर सकते हैं।
9: दरअसल अब हमारे लिए ये सोचना ज़रूरी हो गया है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तानी और जापानी कम्यूनिटी एक साथ मिलकर हम आहंगी के साथ रह सकें,
2: और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने बूथ में कुछ इंटरव्यूज़ किए और वहाँ हमने आने वालों से पूछा कि जापानी मुआशरे से मानूस होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और अब हम नतायज का ऐलान करेंगे।
9: तो ये नतायज मेरे सामने हैं। इस सर्वे में सबसे ज़्यादा जवाब दहिंदगान के ख्याल में मकामी कवायद का एहतराम करना, मसलन कचरे की छांटी और उठाने के दिनों का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा अहम काम है। तकरीबन इतने ही लोगों का कहना है कि जापानी ज़बान में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट इस ऑप्शन को मिले हैं कि आदाब मुआशरत से आगाही जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसलन ट्रेन में फ़ोन पर बातचीत से इज्तनाब करना और मिलते हुए सलाम करना वगैरह। इस मौके पर हमने लोगों के साथ डिटेल में गुफ्तगू की है कि इन तमाम मौजूदात के बारे में, तो वो भी आपको सुनाते हैं।
12: मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ।
9: अच्छा।
12: और जापान में तकरीबन 9 साल से हूँ, और यहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट आया था।
9: अच्छा।
12: PhD के बाद मैं अभी चुनतेंडो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर।
9: यहाँ पे सर हम जानना चाह रहे हैं कि जापानी मुआशरे से मानूस होने के लिए यानी मिक्सअप होने के लिए कौन से 3 काम हैं जो पाकिस्तानियों या गैर मुल्कियों के लिए आप समझते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये है कि मकामी कवायद का एहतराम, मसलन कचरे की छांडी के दिन मुकर्रर होते हैं उन दिनों का ख्याल रखना। दूसरा, मकामी त्यौहार होते हैं उनमें शिरकत। जापानी ज़बान सीखना है, उसके अलावा आदाब मुआशरत है, मसलन ट्रेन वगैरह में बात करने से ये लोग इस्तेनाब करते हैं। रज़ाकाराना सरगर्मियों में वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में शिरकत करना है, और जापानियों से दोस्ती। आपके ख्याल में 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं?
12: देखें जी, सबसे पहले जब ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है, जब तक ज़बान नहीं आएगी तो हम लोगों को समझ नहीं सकेंगे।
9: ठीक।
12: और ये कवायद वगैरह जो है ये भी हम तभी फॉलो कर सकेंगे, उसको जान सकेंगे जब हमें ज़बान आएगी।
13: मेरा नाम तस्मिया है और मैं बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर हूँ। आई विल से कि जापानी से दोस्ती करना ये बहुत आपको हेल्प आउट करता है, जापानी के साथ मिलने, और फिर आप कल्चर भी सीखते हैं इस तरीके से एक दूसरे से, और आप अपना खुद का भी सिखाते हैं और उनसे भी खुद सीखते हैं, तो आई विल से कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग।
14: मेरा नाम मलिक मुर्तज़ा है और पाकिस्तान में मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और यहाँ पर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मकामी जो कवायद हैं इनका एहतराम करें।
9: ठीक है।
14: अक्सर ये होता है कि इनको मसला होता है फॉरेनर से, क्योंकि हम सफाई का ख्याल नहीं रखते, हमारे माशरे में उस तरह इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया जाता, ये तो इसको अपना एक मज़हब समझते हैं, सफाई जो है हर चीज़ उसका प्रॉपर ख्याल रखते हैं। इवन कि हम जब यहाँ पे आते हैं हम खुद ब खुद उस तरह अडॉप्ट हो जाते हैं। मुझे नहीं पड़ता याद आया था कि मैंने रात को भी रोड अगर क्रॉस करना है तो अगर सामने इशारा लगा हुआ है तो मैं क्रॉस नहीं करूँगा, हालांकि कोई गाड़ी नहीं आ रही,
9: कुछ भी नहीं,
14: इसके बावजूद मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये इनका सिस्टम ही ऐसा है कि वो हमें खुद ब खुद हमें ये एहसास दिलाता है कि हम इस चीज़ को फॉलो करें।
15: मेरा नाम हुमेरा अजीज है
9: जी,
15: और मैं जापान में तकरीबन 20

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: उगते सूर्य के देश से सभी श्रोताओं को रंजना सिंह का भी नमस्कार।
2: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: कामायनी जी, रंजना जी, आपको और हमारे सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं।
2: आपको भी बहुत बहुत बधाई।
1: सभी को अनेक शुभेच्छा। और आप बताइए, आपने स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया?
0: देखिए, भारत से दूर इतना जोर शोर से तो नहीं मना सकते हैं, लेकिन हाँ, भारतीय दूतावास में झंडा रोहण समारोह में जरूर शिरकत कर सकते हैं। और जब तिरंगे को लहराता देखती हूँ ना, तो मन में खुशी और गर्व महसूस होता है।
2: जी, सही कहा आपने। लेकिन एक ही दिन देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने की बजाय, मेरा मानना है कि हम अपने दैनिक कृत्यों से देश प्रेम दिखा सकते हैं।
0: विचार तो बहुत बढ़िया है, तो चलिए अपने श्रोता मित्रों से ही पूछा जाए कि उनके विचार में देश प्रेम के लिए क्या करना चाहिए।
2: अगले पत्र में जरूर बताएं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। झारखंड जमशेदपुर से SP शर्मा जी के इस पत्र से। शर्मा जी ने योग दिवस पर चरी के देश से कार्यक्रम की प्रस्तुति को बेहद पसंद किया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, लिखते हैं, योग दिवस पर प्रसारित चरी के देश से कार्यक्रम सुना था। इस प्रोग्राम में योग के महत्व के साथ जापानी प्रैक्टिशनर द्वारा भारत में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने और इतिहास रचने की प्रेरक कहानी सुनी। बढ़िया लगा। योग तो जीवन में नया जोश और उत्साह भर देता है और जीवन को ही नया बना देता है। इस तरह की प्रेरक कहानियों को आगे भी सुनाते रहिए। शुक्रिया और शुभकामनाएं।
1: शर्मा जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए आभार, धन्यवाद। वाकई योग जीवन में नई ऊर्जा भर देता है।
0: जी हाँ, और इस साल की थीम तो हम सभी के लिए जरूरी है, स्वस्थ आयु के लिए योग। वैसे शर्मा साहब, मीनाक्षी मियोको जी के साथ हुई भेंट वार्ता की वीडियो अब वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको भी जरूर देखें। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से योग को अपनाया है, वो वाकई प्रेरणादायक है।
2: मित्रों, आप सब भी जरूर देखें। इसकी लिंक NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के फेसबुक पेज पर पिन की गई है। इस पेज पर जाते ही सबसे ऊपर आपको ये लिंक मिल जाएगी।
0: अच्छा, आप तो देखें ही, अपने मित्रों परिजनों के साथ भी इस लिंक को साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और लोग इससे प्रेरणा लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाएं। रंजना जी, देख रही हो, आपने अगला पत्र उठा भी लिया है, किसका खत है?
1: जी, ये पत्र है ओडिशा के सिंगा से हमारे नियमित श्रोता सुरेश अग्रवाल जी का।
0: अच्छा।
1: लिखते हैं, 9 अगस्त को साप्ताहिक कार्यक्रम चेरी के देश से के अंतर्गत मेरे पत्र के उत्तर को सुनकर मन कुछ देर के लिए भीतर तक उदास हो गया। मन को थोड़ी निराशा अवश्य हुई, क्योंकि वर्षों से जुड़े इस आत्मीय रिश्ते में कहीं न कहीं एक छोटी सी आशा भी मन में पलती रही थी। फिर भी मैं हृदय से आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी भावनाओं को अपने कार्यक्रम में स्थान दिया और मेरे मन की बात को श्रोताओं तक पहुँचने का अवसर दिया।
0: सुरेश जी, यकीन मानिए, आपको निराश कर हमारा दिल भी दुखी है, लेकिन कई बातें हमारे वश में नहीं होती हैं। और देखिए, सुरेश जी ने अपने पत्र में आगे लिखा है, भाई राम कुमार नीरज जी का भी विशेष आभार, जिन्होंने मेरे प्रति इतना स्नेह, सम्मान और आत्मीयता प्रदर्शित की। आगे क्या संभावना बनती है, यह तो समय ही बताएगा। जीवन में कुछ दरवाजे भले ही बंद दिखाई दें, लेकिन उम्मीद का एक छोटा सा दीपक मन में हमेशा जलता रहता है। बहरहाल, एक बात आज भी उतनी ही दृढ़ता से कह सकता हूँ, जब तक सांसों में सांस है, हिंदी के प्रति हमारा प्रेम और हिंदी सेवा का ये साथ यूं ही अनवरत बना रहेगा। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, ये रिश्ता और ये समर्पण कभी कम नहीं होगा। आपकी स्नेह व आत्मीयता के लिए हृदय से धन्यवाद
2: सुरेश जी, आपको भी अनेक धन्यवाद। आप जैसे श्रोताओं का निस्वार्थ प्रेम और निष्ठा ही हमारा संबल और हौसला है।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और देखिए आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हमारे प्रिय श्रोता मित्र RS विजय कुमार ने सुरेश जी की जापान यात्रा की ख्वाहिश पर लिखा है, 2 अगस्त के चेरी के देश से कार्यक्रम में रेडियो जापान के बहुत ही पुराने श्रोता एवं मेरे घनिष्ठ मित्र सुरेश अग्रवाल जी के पत्र का जवाब देते हुए आपने उन्हें जापान आने का निमंत्रण दिया तो एक क्षण के लिए मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन आपने जब ये कहा कि वे अगर जापान घूमने आए तब वहाँ जापान में घूमने का सारा प्रबंधन रेडियो जापान हिंदी सेवा के सदस्य करेंगे, ये बात सुनकर तो मन एकाएक ठंडा पड़ गया। दरअसल मुझे और सुरेश अग्रवाल जी को बड़ी आशा थी कि NHK हिंदी विभाग की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने बहुत ही पुराने एवं नियमित श्रोताओं के लिए कुछ विशेष आकर्षण होगा। हम तो बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। अगर हमें निजी तौर पर कभी जापान भ्रमण करने का अवसर मिला तो हम जरूर आपका आश्रय लेंगे और NHK स्टूडियोज में भी आप सभी सदस्यों से मुलाकात करेंगे।
2: RS विजय कुमार जी जरूर जरूर जरूर पधारें, हम सभी आपके स्वागत में तैयार खड़े मिलेंगे। जहां तक NHK वो जापान से हिंदी भाषा में प्रसारण की 70वीं वर्षगांठ मनाने की है तो उसमें पूर्व प्रसारित कार्यक्रमों के जरिए यादों के झरोखे में झांका गया था। यकीन माने

0: के कुछ तस्वीरें जो साझा किए उसे देखकर तो मन विचलित हो गया। जब तस्वीरों को साझा करने की बात चली है तो एक वीडियो पर अपनी बात रखना चाहूंगा जिसे हाल ही में आपने साझा किया। सांसा ओदोरी उत्सव के वीडियो में नर्तकों ने जिस प्रकार से बांसुरी एवं ढोल बजाते हुए अपना नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया वो सचमुच एक भव्य दृश्य था। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि ये रोमांचकारी नृत्य जापान की एक प्राचीन एवं पारंपरिक नृत्य है जिसे लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रस्तुत करते हैं।
1: विजय कुमार जी, वाकई जापान में जिस साहस और तत्परता से आपदाओं से निपटा जाता है वो प्रशंसा योग्य है। कुमामोतो भूकंप के समय एक अस्पताल में सर्जरी चल रही थी, डॉक्टरों और नर्सों ने जिस साहस से रोगी को बचाने की कोशिश की उसकी वीडियो फेसबुक पर साझा की गई थी।
2: फेसबुक पर कुमामोतो और कोलंबिया के हालिया भूकंप पर कई लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। अस्पताल डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा पर माही मुकेश वादी, अशोक थापियाल, हितेश सोलंकी, बलवंत सिंह, दीपेश बसनेत, विद्या झा, अमोल पवार, सोनू राठौड़, सुषमा सिन्हा, लीला देवी, मंजू ठाकुर, पूजा जायसवाल ने इमोजी के जरिए आभार व्यक्त किया है। सौरभ यादव लिखते हैं, डॉक्टरों की इस निष्ठा को देखकर लगता है कि सच्ची सेवा करने वाले लोग अब भी हैं। गजधारा और आशा कटारिया ने डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा है।
1: वाकई अस्पताल के सभी लोगों ने विपत्ति के समय बड़ी सहजता दिखाई थी, सजगता से काम किया था। जापान पर बरसी अणुबम विभीषिका को 81 वर्ष बीत गए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में स्मृति सभाओं का आयोजन किया गया जिनकी वीडियो पर भी कई लोगों के संदेश मिले हैं। राहुल भारद्वाज लिखते हैं, जापान हमारा अभिन्न मित्र देश है और हम उनके सुख दुख के साथी हैं।
0: वीना जी लिखती हैं, एक ऐसी दुनिया की कामना करती हूँ जहाँ फिर कभी ऐसी त्रासदी ना हो, परमाणु खतरा रहित संसार की कामना में सब साथ आए। वहीं आलोक शुक्ला लिखते हैं कि ये मुझे दुख से भर देता है, अणुबम हमले के पीड़ितों को भारत की ओर से गहरी संवेदना। भारत और जापान महान देश हैं और दोनों के बीच मैत्री हमेशा प्रगाढ़ रहेगी।
1: और अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
3: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और ये एक लाइन का पत्र है धर्मपाल पनिहार जी का। लिखते हैं, जापान में रेल यात्रा के प्रकार और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने की कृपा करें।
0: अरे वाह धर्मपाल जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। जापान की सुचारू रेल व्यवस्था, व्यापक नेटवर्क और समय की पाबंदी के किस्से तो जग जाहिर है। ये जापान के सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा है जो लोगों के दैनिक जीवन और आर्थिक उन्नति को प्रभावित करता है।
1: जी, जापान के उत्तर में होकाइडो से लेकर नीचे दक्षिण में क्यूशु तक रेल की पटरियों का व्यापक जाल बिछा है। देश के किसी भी कोने में घूमने जाना हो तो यकीनन उसके निकट तक रेल सेवा जरूर मिल जाएगी।
0: वाकई, और समय की इतनी पाबंद की क्या ही कहें, 15 सेकंड की देरी हो जाए तो उसके लिए भी माफी मांग ली जाती है।
2: सही कहा। रेल सेवा की पाबंदी ऐसी है कि ट्रेन की रवानगी के समय से आप घड़ी मिला सकते हैं। इसके चर्चे तो दुनिया भर में मशहूर हैं। टोक्यो महानगर और वृहद टोक्यो में रेल सेवा का बहुत घना जाल है जिसमें सतह पर चलने वाली जापान रेलवे तथा भूमिगत रेलवे सेवा, टोक्यो मेट्रो और निजी कंपनियों की अनेक ट्रेनें हैं जो शहर के कोने कोने तक सही समय पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। फिर चाहे दफ्तर जाना हो या स्कूल या फिर शॉपिंग, सभी जगह ट्रेन से आराम से जाया जा सकता है।
1: जी, रेल सेवा टोक्यो जैसे महानगर की रीढ़ है। कितने लोग हैं जो टोक्यो से बाहर रहते हैं और हर रोज ट्रेन से काम करने शहर आते हैं। हमारे सभी

0: साथी भी आज क्या हमेशा ही ट्रेन से ही दफ्तर आ पहुंचते हैं?
1: जी हाँ, तो कुछ शहर में तो गाड़ी रखने की भी आवश्यकता नहीं है, मेट्रो और ट्रेन से हर जगह पहुंच जाओ। इस शानदार सेवा के साथ ही इनकी जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ना, वो है हर ट्रेन में जबरदस्त सफाई। ट्रेन के अंदर और बाहर स्टेशन पर पूरी साफ सफाई दिखती है, जबकि स्टेशनों पर आसानी से कचरा पात्र नहीं मिलता है।
2: ट्रेनों की बात हो और जापान की प्रसिद्ध सुपर फास्ट ट्रेन शिंकानसन को आप कैसे भूल सकते
1: हैं? जी बिल्कुल।
2: तोकाइडो रेल सेवा से इसका जाल बिछना शुरू हुआ था। 1964 में टोक्यो ओलंपिक खेलों के अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ। तब से तोहोकु, होकुरिकु और क्यूशु आदि तक इनका विस्तार हुआ है। रूट के अनुसार इनकी रफ्तार 280 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है।
0: यानी टोक्यो से ओसाका की 500 किलोमीटर की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी। सुबह ओसाका काम से जाओ और रात को वापस घर, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कमाल है। दिन के सबसे व्यस्त समय में टोक्यो से ओसाका के लिए 1 घंटे में 13 ट्रेन चलती है, यानी हर 5 मिनट में एक ट्रेन, जो क्योतो, शिजुओका, नागोया जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ती है।
1: अभी देखिए ना, देश भर में उबोन की छुट्टियां चल रही हैं। इन दिनों अधिकांश लोग अपने गृह नगर जाते हैं, इसलिए शिंकानसेन हो या मेट्रो, हर जगह लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। फिर भी कोई देरी नहीं, ना कोई धक्का मुक्की। जानती है 1964 में शिंकानसेन की शुरुआत से अब तक 10 अरब से ज्यादा यात्री इसमें बैठ चुके हैं, लेकिन दुर्घटना की दर ना के बराबर।
2: जी वो तो है। और देखिए, भारत के कितने शहरों की मेट्रो सेवा भी तो जापानी तकनीक से ही बनी है।
1: जी बिल्कुल।
2: दिल्ली में मेट्रो के बिना जीवन तो आप सोच भी नहीं सकते हैं।
1: बाकी
2: पुरानी दिल्ली से गुड़गांव तक का सफर करीब 1 घंटे में आसानी से तय हो जाता है। सड़क के ट्रैफिक जाम की कोई चिंता नहीं है अब।
0: मुझे तो अहमदाबाद से मुंबई तक शिंकानसेन चलने का इंतजार है। इसमें जापानी तकनीक ही नहीं, लोगों को प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: अच्छा, ये तो बात हुई असली ट्रेनों की, लेकिन बच्चों में शिंकानसेन के खिलौने कितने लोकप्रिय हैं। पेंसिल, रबर, स्केल, बैग, हर तरह का सामान मिलेगा जिस पर उनकी प्रिय शिंकानसेन बनी है।
2: उम्मीद है धर्मपाल जी के साथ ही हमारे अन्य श्रोता मित्रों को भी जापान की रेल सेवा पर ये जानकारी पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। आप हमारी वेबसाइट पर आज के कार्यक्रम को 1 सप्ताह तक सुन सकते हैं।
1: और हाँ, वेबसाइट और फेसबुक पर कार्यक्रम की लिंक को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी साझा करें। और कमाईनी जी, रंजना जी, इस सवाल के बाद आज मुझे अपने एक प्रिय श्रोता मित्र नजीमुद्दीन जी की याद आ गई, जो अपने पत्रों में हमेशा एक सवाल किया करते थे।
2: वाकई उनकी इन दिनों अनुपस्थिति बहुत हम महसूस कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: साथ ही अगर आप जापानी ट्रेनों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर रेलवे किंगडम जापान, समय की पाबंद शिंकानसेन और जापान रेलवे जनरल श्रृंखला भी जरूर देखें, जहां आपको रेल सेवा में आ रही नवीनतम तकनीक आदि पर विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसकी कमेंट्री अंग्रेजी में है, लेकिन साथ में हिंदी सबटाइटल्स हैं।
0: हमने ट्रेनों पर इतनी बात की, तो जाने से पहले क्यों ना इन्हीं पर एक जापानी गीत सुना जाए।
2: क्यों नहीं, तो आइए सुनते हैं ये गीत देंशा नो मादो कारा, यानी ट्रेन की खिड़की से, जिसे स्वरबद्ध किया है बैंड ग्रुप बैक नंबर ने।

0: मित्रों, आप गीत का आनंद लें और एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रिला जैन को,
1: कामायनी सिंह को
2: और रंजना सिंह को
3: सायोनारा, नमस्कार।